0: 97.5 अनूतु 97.7 लखंड रेडियो आईटीएन सबे श्रीलंका हंड
1: विलाव पेरवरे कलहाई
2: विलाव ओपवेत गिन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटी अटे एनएलबी दनडे तहने नुतराईन प्रति संवर्धनेत तनंत शक्तियक वेमिन ओबा दिनवा रटा दिनवत दननिधाने बिलदी दिन ओबा कोटीपति कुवन